0: रेडियो बरसंग दिने तमु केरी समाचार खल खाई गो
1: हम दिने गम ने झुमले हम ए थेलो जे थिज
0: खबर थाली दे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्व केन्द्रीय सदस्य री लमजुम दकाले आरक्षण कोटर बे केन्द्रीय सदस्य मे उम्मेदवार की बरी प्लुले जाना नेता मे न्यू
2: के मे रेडियो बरसंग दिने क्याली दिन नै नानर बे 8 बजे खबर तमु के समाचार ने बरी आमलेत ओ

स्वादलो रेडियो मर्चंगदी 95 मेगाहर्ज देर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्चंगदी .org नाना 8 बजे खबर तमुके मर्चंगदी फेते रिंगा खुशमाय तमुसोला तेबा म ऐश्वरी क्रबे फेते

सुन्दरबजार नगरपालिका चाहिँ थेमैला अठारौं नगर सभा दक्षा तारखाबैना वर्षैना लागि 63 करोड़ 15 लाख रूपियाँ मुई पारित लैम। 3 वर्ष उही सोधक्यायो चितुवा दक्या क्षति तयाँ बोला राहत चुइमु। प्रदेश नासो तहर वित्तीय हस्तान्तरण नोरी मर्सेन्दी नासोपालिकाले 2,12,92,000 विनियोजन। चलित वर्षैना तुलनारी 1,79,000 रूपियाँ कम। दे दोर्दी नासोपालिका नौरना सार्वजनिक सुनवाई छिमो। विभिन्न मीडिया संस्थाले सम्मान लैम। लमजुङ अर्पे सुन्दरबजार नगरपालिका चाहिँ तारखाबैना आर्थिक वर्ष 83-84 लागि 63 करोड़ 15 लाख रूपियाँ मुई सर्वसम्मत रूपले पारित लैब। नगरपालिकाइना 18 नगर सभाध्यक्ष पोखोप मुइजी शिक्षा सुधार कृषि व्यवसायीकरण स्वास्थ्य सेवा पहुँच पूर्वाधार विकास वातावरण संरक्षण दिएर प्रविधि मैत्री सुशासन दे प्राथमिकता थेमो। नगरपालिका रूपे प्रशासकीय अधिकृत विवेक कुमार पण्डित एजी जारी लबा प्रेस नोट दख्या कुल मध्य चालिबा तर्फ 51,88,47,000 रूपियाँ दिएर पुँजीगत तर्फ 11,26,53,000 रूपियाँ मुई पोखैबो। क्षेत्रगत रूपरी सामाजिक विकास तर्फ 35,85,00,000 रूपियाँ। सुशासन देह संस्थागत विकास तर्फ 15,05,00,000 रूपियाँ। पूर्वाधार विकास तर्फ 7,30,00,000 रूपियाँ। आर्थिक विकास तर्फ 3,80,00,000 रूपियाँ दिएर वन द वातावरण र विपद व्यवस्थापन 1,15,00,000 रूपियाँ विनियोजन लैम। डिभिजन वन कार्यालय लमजुङरी जी जान्दयो वर्ष सैलो उइसो यहाँ दक्यायो चितुवाजी खेदोरी तयाबत क्षति न राहत तोखो चुइब। आर्थिक वर्ष 79-80 थेरटी खब चितो मैजी क्षति तयाब लिसु राहत पिबा बाँकी मुबा पीड़ित मैले बैंक खाता तयक्या राहत चुभा पिब। डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्गै अनुसार वन्यजन्तु तयक्या चितुवाइना आक्रमण दक्या खेदोरी तयाब क्षति तया ब्योर्दीबा पीड़ित मैदे पिलपरिपद राहत मुई एक्या पोखरा दक्या तोखो असार महिना रे योबा दक्यायो भकवाला महिना बैंक खाता रे कुलमीबा बी म कार्यालय अनुसार यवा आर्थिक वर्ष रे राहत योबा बाँकी मुबा कृषि सरकारी संस्था दे बालो 16 जना रे चलिबा आर्थिक वर्ष असार महिना रे ब्याङ दक्या राहत पिमीबा बी म पीड़ित मैले विश्या सुन्दरबजार बेसर दोर्दी मर्सिङ डेरा रायन मो चु मध्य रे सुन्दरबजार नगरपालिका नोर्पेङ हौलो बेसर रोपेङ हौलो दोर्दी रूपे 6 रायन रूपे 5 डेर मर्सिङ नासोपालिका रूपे कृषिजना पीड़ित म। तारखाबा आर्थिक वर्षले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा लमजुङ्गाबे मर्सङ्गी नासोपालिकाले करोड़ न्यौलो देवालो 12,92,000 रूपियाँ मुई यो बातै म। दुधपोखरी नासोपालिकाले चलिबा आर्थिक वर्षैना तुलनाले प्रदेश सरकारद्वारा 1,79,000

80,000 रुपया कम यो बातै म चुनासपालिका जीत चलिबा आर्थिक वर्षले 2,14,71,000 रूपियाँ मुहैया बताइम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक लाभ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अंश मर्सदीनाथ पालिका जी तारखा आर्थिक वर्षले सशस्त्र बाहेक समानीकरण अनुदान विशेष अनुदान समपूरक अनुदान शीर्षक मुहैयाइम धुर्दी नगरपालिका वडा नम्बर 9 आर्थिक वर्ष 82-83 छेवा विकास निर्माण नै केदेर सेवा प्रवाह सम्बन्धी गतिविधि हिँड समीक्षा लैमरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम छिम मंगलबार वडा कार्यालय भवन रि तब कार्यक्रम रि वडाजी वर्षभरि लब के उपलब्धि दिएर तारखब योजना बारे जानकारी लमिलो वडा अध्यक्ष आशिष तामाङ हैन अध्यक्षता रि तब कार्यक्रम रि वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर तमजी स्वागत मन्तव्य ललो विषय कार्यक्रम हैन सञ्चालन संचारकर्मी लक्ष्मी खलेजी ललो कार्यक्रम रि वडा सचिव दीपक बुढाजी संस्थागत प्रतिवेदन प्रस्तुत ललो विषय स्वास्थ्य चौकी प्रमुख ललित बहादुर शाहीजी स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्न प्रगति विवरण दिएर बरा मिलान प्राविधिक प्रधानध्यापक खम्बी माया तमुस्योजी विद्यालय हेर्न वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ल सार्वजनिक सुनवाईले तारखबा सहभागीजी ओडावासी मध्ये 10 जनाजी सुझाव देवालो जिज्ञासा थेलो नास्थेमेजी थुवा क्युदेर गोरोटिक्या बनेल परिवार पर्यटन प्रवर्धन लागि ठोस कदम चलेल परिवार ती थुरी आधारहरी मुई विनियोजन लल परिवार चौना योजना दे व्यवस्था लला अथवा फ्यू टावर क्षेत्र रिसर्च सफाई ध्यान पिल परिवार योजना नै नियमित अनुगमन लल परिवार सुभाष सुझाव थेलो कार्यक्रम रेवा प्रश्न दिएर जिज्ञासा वडा अध्यक्ष आशिष तामाङ दिएर वडा प्राविधिक सकलदेव चौधरीजी सम्बोधन ललो विश्व नगरपालिका चाहिँ 3 महिना पहिचान अभिलेखीकरण दिएर सेवा प्रभाव बहाते थप प्रभावकारी बने लक्ष्य दिएर ती नम्बरिङ कार्य शुरू लैम व्यवस्थित ठेगाना प्रभावकारी सेवा प्रवाह दिएर सुरक्षित नगर निर्माण लब उद्देश्यले बालो विश्व नगरपालिका चाहिँ मेट्रिक एड्रेसिङ प्रणाली कार्यान्वयन शुरू लैम ती नम्बर रहेन के सोमबार नगर प्रमुख गुमन सिंह अर्यालजी उद्घाटन ललो उद्घाटन दिशो नगरपालिका कर्मचारी र नगर प्रहरी चाहिँ उही सबै चरण नोरे वडा नम्बर 7-8-33 र थनी हिमारी नम्बर प्लेटिङ टाँसीबा के लैम कार्यक्रमले नगर प्रमुख अर्यालले व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली आधुनिक नगर व्यवस्थापन आधार विभा बीमारी मेट्रिक एड्रेसिङ प्रणाली नागरिक सेवा अझ सहज बनेवा नगरपालिकाले तथ्याङ्क व्यवस्थापन दिएर योजना बनेवा लागि संयुक्तवा बीम विश्व नगरपालिका 8 आर्थिक वर्ष 82-83 वार्षिक समीक्षा दिएर तारखबा आर्थिक वर्ष 83-84 लागि वडा स्तरीय योजना तरुजुमा गोष्ठी छेम मंगलबार नारी स्थानी तब गोष्ठी नासुथेमे वडावासी जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरकारवाला प्रतिनिधिमै सहभागी मूल कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष 82-83 सञ्चालन लैखब कार्यक्रम दिएर योजना नै महिना समीक्षा लबदे बालयो तारखब वर्षै लागि आवश्यक विकास योजना बारे छलफल ललो गोष्ठी सहभागीमै जी क्या भने स्तर उन्नति नाली बने भा क्या दिएर नाली सरसफाई क्या बत्ती व्यवस्थापन लगा लबा पात भए पूर्वाधार विकास सम्बन्धी भए योजना मध्ये उहाँसँग थिए भएरी सुझाव पिलो मर्सङ्गी फेते तोखबे लागि छिजी अन्तिमरी फेते छेउ भन्दा उहाँसँग क्लब फेते फेरि देखे।

सुन्दरबजार नगरपालिकाइन 18 नगरसभा अध्यक्षता रखबा वर्षेन लागि 63 करोड़ 15 लाख रूपियाँ मुई पारितलाईमा झण्डायौं। 3 वर्ष वैंसो चितुवा दखिया खेतोरी तब छेतिन राहत चुइमु प्रदेश गइन नासत वित्तीय हस्तान्तरण नोर्वे मर्संग विनाशपालिकाले 2 करोड़ 12 लाख 92 हजार विनियोजन चलित वर्ष होइन तुलनाले 1,79,000 रूपियाँ कम दे दोर विनाशपालिका नवैन सार्वजनिक सुनवाई छिमो विभिन्न मिदे संस्थाले सम्मान लैमो। नानर खबर तमुके मर्संगी फेरे तो होबे लागे छिजी प्राविधिक छु दिपेश धन्यवाद पिमारी फेते कचे क्याङ खुशी माया तमुसो विदा किमो रेडियो मर्संगी 95 मेगाहर्ज देरा इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संगी .org यदि दिलत ओ छ्याजलो।

तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेन्जी एफएम

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी